0: सुनिए सुना अले हमें बानी में 8 बजे का छा
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको 5 गते कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: सुनिश नहीं हम लोग आने में 10 बजे तक था।
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िए पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: एन्जल फलफुल तरकारी तथा किराना पसल वालिङ आठ बगालेटोल
1: प्रोप्राइटर नारायण पङ्गेनी र पेमा डुम्रे पङ्गेनी
0: मोबाइल नम्बर 9847621380